धन गुरु रामदास जी का उचारिया होया। इस शब्द दे विच धन गुरु रामदास पातशाह गुरु हो के अपने मन की तड़प उस परमेश्वर धन गुरु नानक साहब के दर्शना वास्ते किस तरह मन तड़पद आप जी बयान करते हैं। मेरे मन

प्रेम परी कथा गुर इतिहास ए प्रेम नाल भरिया होया ऐसे परिवार का इतिहास है कि जिन्हों सुन के गुरु दे चरणा दे नाल अपने आप मन जुड़ जाता है।

इस देव सिख माली दे कोल होर भी बहुत सारे माली कम सिखदे ने। ए देव सिख जिथे बाग दा काम करदे दूसरिया नू माली दा काम सिखांदा है, नाल गुरबाणी दा भी प्रेमी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा दा प्यारा एक देव सिख एक एदी घरवाली एक 11-12 साल दी इन्हां दी लड़की ए तीनों जी गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए शुभ गुणा दे नाल जुड़े हुए काम कार कर दे अपना जीवन बता रहे ने। मां बाप धार्मिक ख्यालां दे होन ते बच्चियां ते भी इसका असर होंदा। माता पिता अमृत वेले उठदे ने ते बच्ची भी अमृत वेले उठदी। मां बाप अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दे ने, बच्ची भी नाल बाणी पढ़दी। ए परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया होया। ए देव सिख कदी कदी फुल्लां दा काम करदा अपनी घरवाली और अपनी बच्ची नूं क्या करदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने। आनंदपुर साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे ने उन्हें ऐसा बाग लवाया है हर तरह का फुल उस बाग विच मिलदा है। जिस तरह इंसान की संभाल करी दीए इसे तरह साहब जी फुल्लां दी संभाल करदे। पिता दे कोलो ये गल्लां सुन के वो 11-12 सालां दी बच्ची मन विच प्यार आया। एक दिन कहन लगे पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे तां मैं भी अपने हत्थां दे नाल फुल उगा के आनंदपुर साहब लैके जावांगे। अपनी बच्ची दी ये भावना देखी ते देव सिख निहाल हो गया। गल विच पल्ला पाया, हाथ जोड़ के कहन लगा ऐ कलगीधर पिता तू अंतर्यामी है, जानी जान है। अगर मेरी बच्ची दे मन विच ऐसी भावना है तो कृपा करी पातशाह ये भावना एदी हमेशा बनी रहे। फुल्लां दी बहार सी ते ओ सिख नवे फुल लगा रहे है। ए बच्ची भी चकोदरे नाम दा एक फुल इसने फुल बीजे है। जिस दिन फुल बीजे है उस दिन मन दी ऐसी भावना हो गई जद फुल वड्डा होवेगा आनंदपुर साहब लैके जावांगे। ज्यों सवेर दी बैठी शाम तक उस फुल दे सराहणे बैठी रही। रात कर गई, सारी रात उस फुल दा ध्यान।

अमृत वेले उठी उस फुल दा ध्यान दिन बीतते गए बीज पुंगरिया चकोदरे दा फुल हौली हौली खिलन लग पे ऐ बच्ची दिन रात सौंदियां बहंदियां खांदियां पींदियां उस फुल विच ध्यान कदू फुल वड्डा होवेगा कदू आनंदपुर साहब लैके जावांगे ए एक प्यार है इस बच्ची नू नहीं पता प्यार की होंदा है पर एक खिच है एक तड़प है मन विच और उमर उमर देखिए तो उमर कुछ भी नहीं पर जे प्यार देखिए ते कैसा प्यार उठदियां बहंदियां फुल विच ध्यान निरा फुल च ध्यान नहीं गुरु पिता दे चरणा विच भी ध्यान कदू फुल वड्डा होवेगा ते लैके आनंदपुर साहब जावां।

उस वेले दा ओ नक्शा जिस तरह भी आया उस बच्ची दी बेनती अपनी कलम द्वारा दास ने इस तरह लिखण दा यतन कीता। इस नु कविता समझो या उस बच्ची दे मन दा वैराग वलवला समझो। मानो बच्ची हाथ जोड़ के अरदास पे कर दी है मैनू तेरे नाल इन्ना है प्यार मेरे सतगुरा नीले वाले आ बाजा वाले आ फौजा वाले आ।

इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी, तरला सी, कांबे दा धीरता कंब गया। उदा हाथ पिछा आया पर जसवंत राय वो गुस्से विच कहन लगा, कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा, तेनू क्या फुल तोड़। कामे ने फिर हाथ वधाया फुल तोड़न वास्ते। हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती, ज्यो उथू भजी कहिंदे आ रही है, हाए ना तोड़, हाए ना तोड़ वीरवे। ते कामा उहदा हथ फिर पिछे आ गया। जसवंत राय गुस्से विच कहन लगा, ओए कामिया तू नौकर मेरा है या उस लड़की दा, तेनू क्या फुल तोड़। मालक दा हुक्म कामे ने ते मनना है। उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया, बच्ची भी कोल पहुंच गई। इधर कामे ने फुल तोड़िया, उधर उस बच्ची ने आखिरी वरी किया, हाय ना तोड़। कहिंदी होई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया। उस अपने महल नू मुड़ पिया, पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल पड़े है, वह भी तुरदा जा रहे है। पर उसनू इस तरह जापदा है जिवें फुल विचों इको ही आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। जसवंत राय महल विच जाके बैठा, कामे ने वो फुल सामने रखिया, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़ कहिंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया। कहिंदा जा रहा है मैं अपराध कीता, फुल नहीं तोड़िया, एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी, नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया, पर उसके कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है, ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच। ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गया। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है। देव सिख इहदी घर वाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई, सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय धन पदार्थ बहुत है, गुरु तू बेमुख है, अमृत नहीं छकिया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता। ए नाने हथियार चुके ने, लड़ाइयां लड़दे ने, इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है। पर अज इस नू चैन नहीं आ रहे। रात पई, जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया, ए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने, किसे भी जात दे, किसे भी मजहब दे, ये सारे लोग एक फुल्लां दी तरह ने। कोई किसे रंग दा फुल, कोई किसे रंग दा फुल, फुल आसरे ने, मैं करे ने, खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है, हर फुल दे सराणे एक तुर्क पठान खड़ा है, हर एक फुल दे सराणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली, उन्हां तुर्का पठाणा ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता।
और हरेक फुल विचों एक आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़, फुल लहू लुआन हो रहे ने। ए तुर्क पठान फुलां नु मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा, एक गर्जवी आवाज आई, खबरदार ठहर जाओ, हुण कोई फुलां नु हाथ ना पाना। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुलां नु लताड़न वाले ठठंबर गए, कुछ मारे गए, कुछ भज गए, कुछ आप फुलां दी तरह निमाणे हो गए, संभल गए, सुधर गए। फिर आवाज आई, रख लिया, रख लिया। ए नजारा देख के जसवंत राय दी अख खुल गई, सारा शरीर परसीनी नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया, जसवंत राय कहन लगा, भलिए लोके मैं बड़ा बेचैन हां, इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्सिया, ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे आं, जो सोचदे आं, ओह कई वारी सानू सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझदे कि इन्हां हथियार चुके ने, इह लड़ाइयां लड़दे ने। पर स्वामी जी साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, ओह भी पुन्ना नूं जानदे ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके क्योंकि हथियार चुकन दी जाच नहीं। ए जिहड़ा सुपना देखिया है, ए हिंदुस्तान दे लोग कई मजहबां दे, कईआं जातां दे, ए दुखी ने क्योंकि तुरक मुगल जुलम पै करदे ने, हिंदुस्तानियां नूं परेशान करदे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ विच कृपाण फड़ी हिंदू धर्म दी रख्या वास्ते, हिंदुस्तानियां दी रख्या वास्ते, मजलूमां दी रख्या वास्ते, जेड़े इन्हां फुल्लां नूं हिंदुस्तानियां नूं दुख दे रहे सन, उन्हां दी ढाल गुरु गोबिंद सिंह जी बने ने। पति जी सानू चाहीदा सी असी भी गुरु दी फौज विच हाजर होंदे, सेवा करदे, पर असी ते गुरु तों बेमुख हो गए हैं। ए गल्लां सुन के जसवंत राय कहन लगा, हां तू सच कहनी, गुरु लड़दा पिया साडे लोकां दे भले वास्ते, वो अपने वास्ते नहीं लड़दा। और मैं भी पैसे दे हंकार विच गुरु तों दूर हो गया, पर हुण मैं भी आनंदपुर साहब जावांगा। पर चल पहला दिओ सिख दे घर चलीए, देख के तां सही उस बच्ची दा की हाल। जसवंत राय अपनी घरवाली दे नाल ओ फुल लै के दिओ सिख दे घर वल तुर पिया। मन विच पछतावा कि मैनू की पता सी ओ बच्ची फुल दे नाल।

जसवंत राय अपनी कारवाली दे नाल चकोतरे दा फुल लैके जा देव सिख दे घर पहुंचे अमृत वेला हो चुका सी। उस वेले एना की तकिया एक मंजी ते वो बच्ची लम्मी पई बेसुरत है ते सिख एदी घरवाली होर सतसंगी गुरसिख प्यारे बैठे ने और सारे बैठ के श्री सुखमणी साहब का पाठ पै कर दे। बच्ची दी हालत जसवंत राय देख के उदा हिरदा पारा आया मन पारा आया। जसवंत राय अगे होया उदी घरवाली ओ फुल बच्ची दे मुंह कोल कीता कहन लगे बेटा सानू की पता सी इस फुल विच तेरी जान है जे पता हुंदा ते फुल कदी ना तोड़दा। उठ बेटा अखां खोल मैनू माफ कर दे। बच्ची ने अखां खोलियां पर जद अखां खोलियां बाणी दा अभ्यास सी बाणी पढ़दी ने अखां खोलियां। अखां खोल के पिता वल देखिया पिता दे गल विच गलवकड़ी पा के वो बच्ची कहन लगी पिता जी मैं ते एवें दुखी हुई मैनू ते हुण समझ आए फुल साडा नहीं इह ते साडे मालक जसवंत राय दा। जसवंत राय कोल बैठा ते बच्ची कह रही है ए फुल मेरा नहीं बाग तुहाडा बीज तुहाडे पैसियां दा खाद तुहाडे पैसियां दी असी ते तुहाडे नौकर आ मैं ते एवें गिला कीता। जद ए सुनिया ते जसवंत राय रोण लग पिया कहन लगा बेटा उम्र तेरी छोटी पर गल बड़ी वड्डी कही सचमुच गुरसिखां दे हिरदे बड़े विशाल हुंदे बेटा मैं गुरु तू दूर हो गया सां पर तेरे सदका हुण मैं भी गुरु कोल चलांगा। ये सारे जने हुशियारपुर तू चले आनंदपुर साहब पहुंचे गुरु का दरबार लगा सारे मत्था टेकिया सारे बैठ गए ने। ए बच्ची हाथ विच चकोदरे दा फुल फड़े आ ध्यान गुरु दे चरणा वल कदी गुरु दे चेहरे वल कोल पहुंची सामने फुल रख के जद कलगी तर पिता नूं मत्था टेकिया ता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बच्ची नूं अपनी गोद च बिठाया सिर ते प्यार दिता कहन लगे बेटा तू ते एवें रोई एवें दुखी होई जिस दिन तू बीज बोया तू बीज कोल नहीं बैठी बेटा तू ता मेरे कोल बैठदी रही तू इस फुल नूं पानी नहीं पाया तू ता मैनू पानी पियांदी रही है। बेटा तेरा फुल ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਉੱਠਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਦਿਓ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ।

सुज न सुजई चकवी चंद न डिठा भावे सिमल बिरख न सफल होए चंदन वास न वास समावे सपे दुध प्यालिए तुम्हे दा कौड़त न जावे न्यू थल चंबल चिचड़ी लहू पीवे दुध न खावे न्यू थल चंबल चिचड़ी लहू पीवे दुध न खावे ए सब अवगुण मैं तनु

परम सत्कार गुसा सिंह जीओ एक जकारा सारे रल के बुलाइए बोले सोनियाल भी इकट्ठे और सत श्री अकाल भी इकट्ठे। भाई साहब जी ने बेनती करांगे कि सुर देन आओ सारे करो रसना पुत्र।

इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया, जिसने किया सिदक बेड़ा पार हो गया। पाप गिरासी पृथ्वी तौल खड़ा कर हेठ पुकारा, धरती ने रो के पुकार कीती है निरंकार, मैं बड़ी दुखी हूँ।

जीव जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना।

हर वेले ए पंक्ति पढ़दे रहना ते इस जमींदार दी पिता दी तरह सेवा करनी। ए दंपति उना दे नाल चले गए ते पिता वांग सेवा करनी ते हर वेले रसना तो आखना प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध। ता ए जमींदार इसते इतना प्रसन्न होया कि एक दिन इसने आख्या कि तू मेरे पुत्रां वर्ग है, ए जो कुछ भी मेरा है ए सब तेरा ही है, ए सारे सुख तेरे ने। ते गुरु प्यारियो जदो सब कुछ इन्हां नूं मिल गया, भुख नंग दी पीड़ कटी गई, ते फिर बाबा जी दे चरना चाहे। बाबा जी ने आख्या भी हुण की चाहिदा, महाराज दुनिया दे सारे सुख ता मिल गए, हुण नाम दा लाल साड़ी चोली च पा दी। हजूर ने आख्या फिर बई जिवें पहला पढ़दे सो प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, ते हुण पढ़िया करो प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। ता आत्मिक दाता दी तुहाडी चोली विच आत्मिक दाता पै जावणगी। ता उस दिन तो इन्हां ने पढ़ना शुरू कीता प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। ता ऐसे सन बाबा जी, जेकर कोई दुनियावी शै वी मंगण आउंदा ता नाल ओनू ओह वी देंदे, पर नाल नाल बाणी दे नाल वी ओनू जोड़ देंदे, क्योंकि महापुरख दा ता कम है वाहिगुरु दे चरणा नाल जोड़ना। सुई सुहागा संत जन ए तीनों है जोड़न, सुई भी जोड़दी है सुहागा भी जोड़दा ते संत जन भी टुटे हुए बंदे नू वाहिगुरु नाल जोड़ देंदे। इसलिए प्यार वाले कवि ने आख्या भी रब दा नाम जपावन दे ले दुनिया दे विच आए, ओ किसे आवागमन दे चक्कर विच नहीं आए, ए ता नाम जपण वाले

सुखमनी दा नाम बाणी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत वचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज कर दे हो ना, हुन लगातार सुखमनी दी बाणी।

चोला बदलन लगिया कोई देर नहीं लगाउंदे। आख्या हाथी नूं तां कच्ची तंद तोड़न वेले भी समा लग सकदा, पर महापुरख चोला बदलदिया एक निमक भी नहीं लगाउंदे। महापुरख तां चोला इंज छड़ जांदे ने जिवें सप अपनी कुंज छड़ जांदा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। बाबा जी जदों चोला छड़ गए, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने सेवा संभाली, तां उस वेले भी कलयुग ने आके अवज्ञा करनी चाहिए श्री

इन्हें मन विच सोचिया 50,000 रुपया दे देवांगा। बाबा जी हिरदे दी पट्टी वाच गए ते कहन लगे भी ये ता थोड़ी है। फिर मन विच कहंदा है 1,00,000 रुपया दे देंगा। उस वेले 1,00,000 बहुत होंदा सी। बाबा जी ने फिर आख्या भी पेटा थोड़ी है, मां पुरखो जो मंगोगे देवांगा। आख्या बचन है।

ऐसे लै गया सेवा लै गया माया लै गया पर ऐसे महापुरख जिन्हां ने मेनू तारन दा सोचिया चरना ते गिरिया महाराज बख्श लो ता इसने भी अमृत छकिया ते होर इस नूं देख के हजारा संगतां ने अमृत छकिया। ए सन बाबा जी दे तारन दे ढंग नाम जपावन दे निराले ढंग सन बाबा जी दे जो कोई भी आउंदा उस नूं नाम जपाउन दे ताई ता अज नाम जपिया जिथे बैसन साध जन सो थान सहंदा नान।

तो निरंकार नू क्यों विसारे है? जिस परमेश्वर ने तेनू एडी अमोलक देही एडा अमोलक समा बख्शिया तू उस निरंकार नू क्यों विसारे है? प्यारी साध संगत ऐसे संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरख संसार विच नित अवतार होंदे ने ते भुले भटके लोगां नूं मुड़ समत ला के वाहिगुरु नाल जोड़दे ने। ऐसे महापुरशां दी गाथा अज आपा सारे

बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वालियां ने निरंकार नाल जोड़िया, क्योंकि आए तो असी निरंकार दे करों हां, पर संसार विच आके परमात्मा नू भुल जाने। ता ब्रह्म ज्ञानी महापुरख रब दे प्यारे ए सानू याद दिलाउंदे ने, बई तू नाम जपना है। ऐसे महापुरख सन बाबा जी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा करके

कर किधरे मन ने कह भी देना मैं अज नाम नहीं जपना ते बाबा जी ने खूद ही डार उत्ते जा बैठना खूद ही बनी जा बैठना कि मना जे नाम नहीं जपेगा सोवेगा आलस कर।

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभा ही बन चुकया है जे एक जन्म दा होवे सुभा तां बदल लईए कईयां जन्मां तों एही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना आद अंत जो

परमेओ मूड़े ममता लागे तुद हर विसरे तू क्रोध दे वस हो गए काम दे वस हो गए ममता दे वस हो गए।

गुरु अमरदास जदों गुरु नहीं सन बने हर साल हर द्वार गंगा नहाण जाया करते सन। इस वरी भी गंगा नहाण जदों गए एक ब्रह्मचारी महात्मा मिल गया, ऐसा प्यार पिया

गुरु अमरदास जी ने बैठ के शक लेना। जे गुरु अमरदास जी ने प्रशादा पकाना, उस ब्रह्मचारी ने नाल बह के शक लेना।

गुरु अंगद साहब दूसरे गुरु। गुरु अंगद साहब की सपुत्री अमृत वेले बाणी पढ़ रहे सन ते गुरु अमरदास पुछदे ने, बेटा कि तू की पढ़दी? अगू जवाब दिता, पिता जी मैं तन गुरु नानक दी बाणी पढ़दी।

राजा जनक वड्डा भगत है जिन्हें माया ते काबू पा के रखे, पर राजे जनक नू भी गुरु दी

नाम है अष्टावक्र। कहने लगे राजे जनक नू, मैं तेरा गुरु बनांगा। सारे हंस पे। कहने लगे अपनी शक्ल नहीं देखदा, कुब निकले सीधा तुर नहीं सकदा, बच्चे शक्ल देख लैन ते सारी रात सौण ना। आया राजे जनक दा गुरु बनन। पर अष्टावक्र जी ने उन्हां लोकां दे मखौल वल ध्यान नहीं दिता। राजे जनक नूं कहा, मैनूं पेटा की दे।

इस वास्ते उपदेश है तुझ सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरानू ना सिखाल बिखिया पहला पहा पया पा दे पिछो दे गल चाटड़िया एक एहो जो उपदेश लोकां ने क्यों माड़े पासे लाना है पहला जमा दा फहा तेरे गल पवेगा ते पिछू तेरे चाटड़े उपदेश है।

नाम जपण वाली, ना पति है ना कोई पुत्र है। ए राम सिंह ए चारों भरा ए बोलते नहीं, इन मन होश गरीब समझते ने, कोई एदा सत्कार नहीं करता। अरे बड़ा सिमरण करती कपा चुगी वाहेगुरु वाहेगुरु करके सूत्र उणिया वाहेगुरु वाहेगुरु करके कलगीधर पातशाह वास्ते एक खेस उणिया वाहेगुरु वाहेगुरु करके रोज अरदासा करती ऐ कलगीधर पातशाह। पति सिर ते नहीं पुत्र तू कोई बख्शिया नहीं, किदी बांह फड़ के तेरे को लावां, किन्ना चंगा होवे जे तू मैनू दर्शन देवे, एक खेस लै लवे मेरे मन नू ठंड पै जाए। ये अरदासा कर दी उधर साहबां नू।

सिंह बड़ा खुश होया। पिंड वाले नु पता लगा, तैयारियां होने लग पईयां कि गुरु साहिब ने साडे पिंड आना।

पर साहब जी बड़े बेचैन होके उधर आदर तकदे ने, क्योंकि उधर बीबी देसा अरदासां पे करदी, तो खिच पैंदी।

चरण फड़ ले, अथरू नहीं रुकते, कोई इज्जत नहीं देंदा, कोई मान नहीं देंदा, पर जदों पिता गुरु मिले मन फिस गया। ऐ मना पिता गुरु घर आया, हुण गुरु नूं अपना दुख दसना है, अपना सुख भी तां इहनूं ही कहना है, होर कौन है। पता नहीं किन्ना चिर बीत गया, कलगीधर पातशाह ने प्यार नाल सिर चुके आख्या, बेटा ये साडा खेस संभाल के रख, अस फिर आके लै जांगे, नाले रोटी भी खावांगे। बीबी दे सन किसे आनंद विच गुआच गई, सबा फिर घोड़े ते छाल मार के सवार होए। राम सिंह अगे उड़ीक रहा सी, ओदे पिछे जा पहुंचे।

करोगे तुसा मेरा की सत्कार करना है। और मैं कड्डो मना विचो देखो इनू मथा, तुसी चार भरा हो, अमृत छके है पर आपस च प्यार नहीं। जे तुहाडे विच प्यार नहीं तो तुसी मेरे नाल की प्यार।

रो लिया रो रो के मेरे सन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुस्त हो पातशाह बख्श अदूर कहन लगे मरदाने बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो थोड़ा बिरद जो शरण आवे तो संत लावे ए बिरद तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तुकिया करोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम करोड़िया नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र गाड़ी बाणी पड़े गाड़े सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया सेठ गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चलो मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल है चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह हजूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख बन सिखी गलां भी सी गलां की सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह तो करोड़िए चरण है पातशाह मैं गरीब ने भी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आता है फिर जिना संभाल लेता है वह पाज करोड़िए बख्शिश होते तो भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समा पूजने बख्शिश तो सदी ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा विचे बख्श दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्हों ने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा करोड़िया ये मालिक की दात ये जोर भी चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत पी तो ये दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगे मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द ही अकेली तक पड़ी मरदानिए ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले ये शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: और कई साथी जो गुरु का उपदेश सहबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय से बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुखे ने हर पल आते हैं और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत ये गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन कह दी है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आदि जी की महान महान बख्शिश द्वारा बरफुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने सिखा बच्चियों सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा
2: Thank you.

देव पिया मानो के नाम जपन वालियां दे देव, नाम जपन वालियां दे बड़े जिन्हां नू सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नाम देव ने बचपन दे विच नारायण नू प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए, ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नू याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए, ते चल पे उना दे नाल तीर्थां दे भ्रमण करदे करदे, ते जा करके द्वारका नगरी तो थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भई ए मेरे नाल जो चले आ रहे हन तीर्थां ते भ्रमण करदे करदे, एते हुण बहुत प्यासे हन, कोई युक्ति कीती जावे ता जो इन्हां दी प्यास बुझाई जावे। ते ज्ञानेश्वर जी ने अपना लोटा लिया, रस्सी नाल बनिया, ते अपने योग बल दे नाल उस खूह दे विच जो पानी सी, जो थले सी, उस नू लोटे विच भरिया, ते बाहर कढ करके नाले ते अपनी प्यास बुझांदे गए। नाले फिर

सेवक के भरपूर जोग जोग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।

सारी लुकाई 84 लाख जून उस अकाल पुरख वाहिगुरु पासो मंग रही है। आखें मंगे देहे देहे दात करे दातार, किसे नू वापस नहीं खाली नहीं भेजदा। वाहिगुरु दाता दे रहे है, पिछे भी देंदा आया हुण भी दे रहे है, ते रहिंदी दुनिया तक देंदा ही रहेगा। पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह एक अमोलक दात मांग रहे हैं। कहिंदियां ए मनुख तैनू जुगा जुगंतर मंगदिया हो गया, देन वाला नहीं थकिया नहीं अकिया, लैन वाला थक जांदा है, भाव स्वास पूरे हो जांदे ने, फिर जन्म लैंदा फिर मंगदा। इसे तरह अनेक जन्म मंगदिया हो गए हैं। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने काश के तैनू मंगना आ जांदा तां फिर तैनू कुछ मंगण दी लोड़ ना पैंदी। दातां तां रोज ही मंगदा है, किते दातार नू मंग लैंदो तां तैनू मंगण दी लोड़ ना पैंदी।